0: sundirmayınca Karikrem Puspanjali.
1: आदरणीय श्रोता कार्यक्रम पुष्पांजलि में अहिले यहाँ केही सुमधुर

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेज धर्म

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली का

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमङ्गलममा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: आदरणीय श्रोता यहाँ अहिले जय श्री फूड्स प्राली को प्रायोजन में रहेको कार्यक्रम सर्वमंगलम मा श्री महावीर हनुमान जी का कई भजन सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली का उत्...

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वाओ
5: अनि मलाई

0: సాబేల్ చుచ్చేపాటి
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
5: बार्सिलोना

0: चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा दुश्मन, क्या
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही वो
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता फूलवती। काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

राधाकृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधाकृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: 104.8
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई।

0: मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20 मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20 में संपर्क करना सक्नु हुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।

हेलो बहनों और भाइयों, फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के लाजवाब गीत हैं, हंगामे हैं, फिल्म स्टारों की आवाजें हैं और कई मुस्कुराहटों के साथ साथ कुछ आंसू भी हैं। तो लीजिए शुरू करता हूं 1976 यानी 1976 के आधे हिस्से की हिट और छाओं के गीतों की सुरीली मजेदार कहानी।

1976 की सालाना संगीत सीढ़ी पर फिल्म जाने मन का ये गीत वार्षिक पायदान नंबर 33 पर था और नंबर 32 पर आया था काला सोना।

हाँ भाई, एनुअल गीतमाला हिट परेड की पायदानों के गीतों के तो गीतमाला की छाव में ज्यादातर मुखड़े ही मुखड़े बजते हैं। वो सारे हिट गीत तो भाई आपने कई बार सुने हैं ना। पूरे पूरे अमर गीत तो शुरू होंगे आज चार और झलकों के बाद। बस तो अब जल्दी से हो जाए सन 1976 का गीत नंबर 31। फिल्म थी आपके लिए वॉरंट मगर प्यार का।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 98026788।
8: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: अरे बाप रे भाई, 1976 की सालाना गीत माला की नीचे वाली पायदानों के गीत जो थे वो ऐसे ही कुछ गड़बड़ वाले से थे। असली मजा तो आपको जरूर आएगा ऊपर वाली पायदानों पर। हाँ, खैर उन दिनों कपूर खानदान से मेरी काफी दोस्ती थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी टांग खिंचाई करते हैं रणधीर कपूर यानी के डब्बू मियाँ की। तो मैंने चलवा दिया उन पर एक धमाकेदार फिल्मी मुकदमा, जिसमें रणधीर कपूर पर एक चार्ज ये लगाया गया था कि वो हसीन बबीता से शादी करने के बाद भी वो तेज तर्रार और हरदिल अजीज रेखा के साथ बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं। तो सुनिए एक टुकड़ा उस मुकदमे का जिसमें मैं बना था गड़बड़िया वकील।
2: श्री रणधीर कपूर, फिल्मी दुनिया में और भी कई हीरोइन हैं, फिर आप अपनी इतनी सारी फिल्मों में रेखा के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
3: इसलिए कि रेखा मुझे पसंद है।
2: मगर सवाल यह है कि क्यों पसंद है?
3: मजनू को लैला क्यों पसंद थी वकील बाबू?
2: मुजरिम रणधीर कपूर, सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि तुम, यानी कि सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आप दीजिए। आप रेखा के साथ इतने सारे रोल्स कर रहे हैं, इसके बारे में बबीता का क्या कहना है?
3: ये मेरे और बबीता के बीच में का मामला है। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी बीवी का आपके बारे में क्या कहना है?
0: खैर बहनों भाई, अब आप मुकदमे से निकलिए और जल्दी जल्दी और ऊपर चढ़िए 1976 की गीतमाला की सालाना पायदान नंबर 29 यानी 29 पर। उस पर था फिल्म सलाख।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: अच्छा, अब सलाखे के हीरो शशि कपूर के भतीजे रणधीर कपूर की एक और झलक देखिए, जो उस साल पोंगा पंडित के रूप में पायदान नंबर 28 पर अपनी बीवी और साली के बीच झूम रहे थे।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। बस बस सालियों और देवरों, अब आप जरा खामोश हो जाइए, क्योंकि 1976 की छाव का एक बड़ा ही सुरीला गीत आ रहा है आपके मन में बस जाने के लिए। गायक वो हैं जो साउथ की पिक्चरों में तो सुरों के शहनशाह का दर्जा रखते हैं, मगर हिंदी फिल्मों में उनकी आवाज और गायकों के मुकाबले में जरा कम ही सुनाई दी है। नाम है उनका यसुदास। ये गीत जो उनका अब आप सुनेंगे वो फिल्म चित्चोर में था, धुन रविंद्र जैन ने बनाई थी और उसमें यसुदास के सुर में सुर मिलाया था एक बड़ी ही सुरीली लड़की हेमलता ने। आहा हा हा भाई, क्या आवाज थी उसकी भी। एक बार वो आवाज गीतमाला की सालाना चोटी पर भी सुनाई दी थी, फिर वो बिल्कुल गायब सी हो गई, मगर हम सब के मन में तो वो अब तक बसी हुई है। मानो हेमलता भी और यसुदास भी हमारे मन के हों चित्तचोर।

यशुदास जी की आवाज आज आगे चलकर भी आएगी। अब आप लौट आइए गीतमाला की 1976 की वार्षिक संगीत सीढ़ी की झलकों में। उस साल नंबर 27 पर उभरा था फकीरा, एक नई कहानी लेकर।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई भयो सधैँ भयो।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: ओल्ड प्यालेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ,
2: चिर परिचित, यहाँ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

0: छठा खंड अध्याय प्रथम उग्रसेन सिंधु का जन्म। त्रेता युग था, मिथिला देश के गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी, इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय एवं निरोग रहती थी। सदैव अपने राजा की जय जयकार करती रहती थी। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी कि राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वह महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है मुनिराज, मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान सूर्य को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बताया और बोले, इस अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर भगवान सूर्य की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी, फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रतानुष्ठान एक मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 100,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर भगवान सूर्य देव की पत्नी सहित 100,000 नमस्कार करना भी आवश्यक है। मुनि चले गए। राजा ने अपनी भार्या के सहित भगवान सूर्य की उपासना आरंभ की। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य देव को अपने पति के रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातः काल उन्होंने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उनके शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इस कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में समर्थ ना थी। अंत में प्राण संकट में जानकर उन्होंने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय में ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु उग्रा की विवशता जानकर वे कुछ कह ना सके। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, वह एक रौद्र बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसके रुदन स्वर से धरती आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा एवं मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल उत्पन्न लिए हुए था वह बालक। उसके कारण समुद्र जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र देव स्वयं मानव रूप धारण कर कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है, इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर दुग्धपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रीषण और विप्रसादन रखे गए। वह शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उग्रीषण का प्रबल पराक्रम तथा वर की प्राप्ति। उग्रीषण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल्यकाल में ही मनुष्यों से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने वाला। उसने छोटी सी आयु में ना जाने कितने हाथी आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही धराशाही कर दिए। ना जाने कितने वृक्ष गिरा दिए गए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रीषण ने अपने माता पिता से एक दिन में कहा, मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति दी। उन्होंने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तपस्या करने लगा। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत कर दिए। शुधा, पिपासा, धूप वर्षा आदि सहते सहते सूख कर कांटा हो गए। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रख कर निवेदन किया, प्रभो, मैं सभी देवता मनुष्य आदि को जीत कर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी ना हो। भगवान सूर्य बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रहना। इसके रहते हुए देवता मनुष्य नाग पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात्रि प्रभात या सायंकाल कभी भी ना मार सकेगा। जब यह पात्र हट जावेगा तभी अपने अंगुष्ठ के नखाग्र पर करोड़ ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होगे। वरदाता भगवान सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रीषण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया तथा स्वयं तपस्या हेतु वन में चले गए। उग्रीषण के राज्य का विस्तार होना। उग्रीषण ने राज्य होते ही राज्य का विस्तार आरंभ किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े समय में ही उन्होंने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उनके राज्य छीन लिए गए। इस प्रकार उन्होंने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देव सेना छिन्न भिन्न हो गई। देवनारियां सतीत्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जा छिपी। उग्रीषण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए देवराज इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान हो स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रीषण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गए। भगवान ने चक्र चलाया तो उन्होंने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए, फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है। इसीलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुरराज, मैं तुम्हारे प्राकर्म को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो। वह बोला, देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें, बस इतना ही वर अपेक्षित है। भगवान श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने वैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा, आप चाहें जिन देवताओं के सहित यहाँ सुख पूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मृत्यु धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर? रमानाथ ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं एवं मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। परंतु वे यह कभी नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखना है या नहीं इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ दान उपासना आदि ना करे, मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबो दी जाएं अथवा धरती में गहरी गाड़ दी जाएं, उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेशन मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राज्य भय से सबको वही करना पड़ा जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे। नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस मदिरा सेवन, सतित्व नाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।
1: सुन्दै हुनुहुन्छ FM अध्यात्म ज्योति 104.4।

दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा संकष्टी चतुर्थी व्रत करना। उग्रेषण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देव गुरु बृहस्पति ने उपाय बताया, भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए गुरुदेव? यदि पूरी बताने की कृपा करें तो वैसे ही करने को तत्पर हूँ। भगवान बृहस्पति बोले, अब माघ मास का आरंभ ही है, कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसे दिन उनका षोडशो उपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे, तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सुर गुरु के आदेशानुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर षोडशो उपचार पूजन करने के पश्चात भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। दीनानाथ दया सिंधो योगी हृत पद्म संस्थित अनादि मध्य रहित स्वरूपाय नमो नमः। हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्या, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, देवगण, आपके द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलिए, क्या चाहते हैं, वही मुझसे ले लीजिए। देवता बोले, प्रभो, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। नाथ, उग्रेषण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर ले, ऐसी कृपा कीजिए। गणनायक ने आश्वासन दिया, देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रेषण का विनाश शीघ्र ही समझो। कैलाश से भगवान शिवजी का पलायन, यह कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर, माता पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां दैत्यराज के भय से संत्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर माता पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं ही सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। भगवान शिव जी बोले, प्रिय, अनंत कर्म करने वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए तप करना आवश्यक होता है। माता पार्वती को पुत्र की प्राप्ति, मयूरेश्वर का जन्म। माँ गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो भगवान शिवजी ने उन्हें भगवान गणेश के एकाक्षी मंत्र गंग का उद्देश कर उपासना की विधि बताई। तब माता गौरी भी प्रसन्न मन से भगवान शिवजी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए सेखनाद्री पर्वत पर गईं। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया।

तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था, 10 भुजाएं, गज वदन मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उन गौरवण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। माता पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभीष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त करावें। एवं अस्तु कहकर देवाधिदेव भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। माता गिरिजा ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना कर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गई तथा उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। भगवान शिव जी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रेशन और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति भी कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में माता पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी का 16 उपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने माता गिरिजा से कहा, मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। माँ गिरिजा बोली, महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौरवर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोगों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान शिव जी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिए। माता पार्वती ने उन्हें दुग्धपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इनके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यंभावी है। उग्रेशण का चिंतित होना। उग्रेशण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेका अनेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी माता पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है जिसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा, कहां मैं इतना विशाल काय और महाबली तथा कहां वह छोटा सा नवजात शिशु, एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज, तेरा काल समीप है, तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है, मिथ्या अभिमान छोड़कर उनकी शरण ले ले। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसीलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलवाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें जिससे आप निश्चिंत हो सकें।
उग्रेशन ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुर राज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

0: खेलौन नपर्ने जर्मन प्रविधिबाट बनेको उत्कृष्ट उत्पादन ऊर्जा दाल र चामल। ऊर्जा दाल चामल स्वादले खाइन्छ, सधैँ स्वस्थ भइन्छ।
1: एफएम अध्यात्म ज्योतिका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2: तीसरा अध्याय, गृध्रासुर का मारा जाना। एक दिन एक असुर ने गृध्र का रूप बनाया, कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उनके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आईं, तो उन्होंने पुत्र को कहीं ना देखा। इससे हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गृध्र सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरते देखा तो उस ओर दौड़ पड़े। इतने में ही राक्षस धराशायी हो गया और माता पार्वती जी ने तुरंत ही भगवान गणेश जी को उनकी चोंच से निकाल कर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। शेमासुर एवं कुशलासुर का मारा जाना। शेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पाव एक कोने में जा छिपे। तब माता उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं। तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी भगवान गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीला पूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर सुदूर अरण्य में फेंक दें। क्रूर नामक असुर की मृत्यु। तीन राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो गई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है, फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे, अतः मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले गया उसे गौरी नंदन गणेश के पास। वह माता पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उन्होंने सोचा इससे अच्छा अवसर और कब आएगा, वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति जी को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह मूड उस गूढ़ हंसी का अर्थ ना समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केश खींचता। आरंभ में तो भगवान गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुरों के आघातों में प्रबलता आने लगी तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई माता गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित हो उठी कि यह मुनि कुमार का गला अधिक ना दबा दे, इसीलिए उसे बचाने को दौड़ पड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्म वेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। माता पार्वती जी ने उसे देखकर अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को उठाकर गोद में ले लिया। व्योमासुर वध। यह असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्ध हस्त था, इसीलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन भगवान गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती जी के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदि देवगणाध्यक्ष का पूजन पुण्य वाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। तदउपरांत ऋषि विप्र आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। यही अवसर व्योमासुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई ना देता था। उसी समय उस असुर ने भगवान गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु भगवान गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही शत विशत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भयातुरा माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को अंक में ले लिया और दुग्धपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषि गण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। राक्षसी शत महिषा का वध। व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर एवं विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी, इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और माता पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। माता पार्वती जी ने उसे कोई देवकन्या समझा, इसलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट कर उसे रात्रि में अपने ही पास सुलाया, परंतु भगवान गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे।
1: पहले सुन्दे हुनुहुन्छ FM अध्यात्म ज्योति 104.5।

माता पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसे सुनकर माता पार्वती जी ही नहीं, अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से पृथक हो गए। अब उसका आसुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयाक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर दुग्धपान कराने लगी और भी अनेक राक्षसों का वध। तदुपरांत एक एक करके अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुदुम्भी, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी यह लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। तरह तरह की बाल क्रीड़ाएं। अब माता पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। माता पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थीं और वे शुधा आतुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे और कहां से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुंचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर पाकशाला से बाहर निकल आईं। अवसर देखकर भगवान गणेश जी ने पाकशाला में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथी बालकों ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है, इसीलिए उठा लाया हूँ। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा लें तब पुनः खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है। वे विस्मित चित्त से महर्षि के पास जाकर बोले, नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है, अभी बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। पाकशाला में गए और सब और दृष्टि फिराई। अन्न पात्र कहीं नहीं।

पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है। अभी बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी आश्चर्य हुआ, पाकशाला में गए और सब और दृष्टि फिराई, अन्न पात्र कहीं नहीं थे। वहां जाकर उन्होंने कहा, शिवे आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है, आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्वदेव आदि भी ना हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। माता पार्वती बोली, महर्षि मैं भी इनके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। इनके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसीलिए इसे दंड देना पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। महर्षि ने कहा, मातेश्वरी इसे बांधने की अपेक्षा स्नेह पूर्वक समझाओ। महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। माता को आश्चर्य हुआ, उसने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पूर्वत बैठे हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। माता पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर पुनः किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जा बैठी, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन ना लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो मार्ग में देखा कि मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेह पूर्वक पुकारा, पुत्र घर चलकर जलपान कर लो। बालक ने उत्तर दिया, माता यहाँ तो मयूरेश्वर नहीं है, उन्हें तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। माता को ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा, वह रोता रोता सो गया था। माता ने बंधन खोलकर उसे हृदय से लगा लिया और स्तनपान कराने लगी। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजन आरंभ किया, किंतु यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। कहने लगे, देखो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात पर ब्रह्म ने अपने मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें। यह कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहिल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय।